वल्लभ राधा रमना राधा रमना राधा रमना राधा रमना राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा रमना राधा रमना राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा रमना राधा रमना राधा वल्लभ राधा रमना राधा रमना राधा रमना राधा रमना राधा रमना राधा

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पतित पावनी पुरी अयोध्या जिनका धाम है. द फ्रेज इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लॉर्ड राम हुज नेम इज द अल्टीमेट प्यूरिफायर एंड हुज ब्यूटिफुल अबोड इज द होली सिटी ऑफ अयोध्या. ऑफन यू फाइंड दिस पर्टिकुलर लाइन इन डिवोशनल हिम्स, इन डिवोशनल भजन्स एंड कीर्तन्स विद इन द ट्रेडिशन ऑफ भजन्स इन द डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक. वेल दैट वॉज Patita Pavan, and that was in the voice of Agnihotri Bandhu. This is Bhakti Sangeet. Stay tuned.
1: Bhakti Sangeet. Bhakti Sangeet. Sundays, 5 to 7 p.m.
0: Welcome back. In the first half of our program, we have two scripture readings, and this is beautifully complemented by all the lovely devotional songs in the diverse vernaculars of the South African Indian language diaspora, celebrating rich cultural and spiritual unity. Together, these elements create a soothing and a meaningful start, offering both wisdom and musical harmony. We'll now listen to Shiva Om Yendra, a Muruga song.

अपना। या क्या बात है भाई, छोड़कर अब तेरा सताना, करबला में जा रहा हूँ नाना। अफसोस, यू नो व्हाट डू यू से, यू नो आफ्टर लिसनिंग टू सच ब्यूटीफुल कलाम्स एंड इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड ऑफ कोर्स दोज ग्रेट मार्चर्स ऑफ इस्लाम, मैं जिक्र किया करता हूँ हरदम हुसैन का, मैं जिक्र किया करता हूँ हरदम हुसैन का, सीने में बस गया हूँ मेरे गम हुसैन का, मैं जिक्र किया करता हूँ हरदम हुसैन का, सीने में बस गया है मेरे गम हुसैन का, और मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। कवाली नगमों का ये प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। मैं आपका मेहसबान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं। Yes, you are with Ibi Mahmoud, and it's our dedication to the martyrs of Karbala, the shaheeds of Karbala. Shukriya to Hamare Arif Jatam Sahab, Escort ke rehne wale hain, and Fazle Khan of Kronstadt as well, and also listening to us is Rehana Saidar Khan as well from Northern Natal, Hamare Shahid Mia, Riz 5. Yes, all our regulars are back. I can see the Mohammedan Fatima Bibi of Unit 9 in Chatsworth, Ahmed Shabir Rashid Sahab, Aslam Suleiman Cape Town, Nazir Khan Sahab, and Saath Ne Saath, Hamare Babu Gora Ashrafi Sahab, bhi, mashallah. Maybe, you know, of course, he's another one that writes some beautiful kalams, badi behtareen kalam likhte hain mashallah, and of course on Imam Ali Maqam he's written some beautiful kalams, so jitne bhi unke chahane wale hain, and of course all of us are lovers of the martyrs of Karbala, to khas aap log ke liye, this is a kalam that's going to bring lot of memories back, and I know many of you are going to become emotional after listening to this kalam. Hamare Sattar Rio Sahab, you know, of Alpine Road, one of the elders of ours, together with Behen Razia, Sattar Mia, Behen Razia, and all those that are listening, ye kalam khas aap log ke liye hai.

0: सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। जी हाँ, लाइक आई सेड, इट इज अवर मुहर्रम स्पेशल एंड स्पेशल रिमेम्बरिंग द ग्रेट पर्सनैलिटीज, द शोदाए करबला, अहल बेत अथार, पंजतन पाक, एंड इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहि सलाम। यस, एंड ऑफ कोर्स वी हैव द जुनैद इब्राहिम फैमिली, दे एट इट वंस अगेन। द जुनैद इब्राहिम फैमिली हैज योर फुली वेल अवेयर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, दे हैव बीन इन्वॉल्व इन मैस फूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट डर्बन एंड द केजेडन रीजन, एंड दे एट इट अगेन। एंड ऑफ कोर्स इन द लव ऑफ द इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अली सलाम, फैजान करबला एंड अहल बेत रदियल्लाहु अन्हुमा, दे आर गोइंग बी डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ऑन 12th of July बिटवीन 1400 आवर्स एंड 15:30, दैट इज बिटवीन 2 and 3:30 PM एट द स्टैनमोर सेकेंडरी स्कूल हॉल, स्टैनमोर सेकेंडरी स्कूल हॉल। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी, all are welcome, friends of all denominations are welcome to come and collect your food, and please ensure that you bring your own containers. There'll be acne cold drinks as well, and at the same time we request you not to forget one of our ardent listeners, and that is Haji Muhammad Rafiq Ibrahim Saab, who is the father of this family. Sadly, he has left this world for the world beyond, but our duas are with the family as well, and we are indeed grateful that they always advertise with us at Lotus FM. And also, sadly, the mother, Mom Aisha Begum, who is not in the best of health, we make dua that Allah bless, grants Shifa-e Kamila as well. Remember, the mass food distribution during this month of Muharram will take place on the 12th of July under the guidance of the Junaid Ibrahim family at the Stanmore Secondary School, and we have an acne cool drinks will be distributed. And time again, 1400 and 1530. Then we also have the Sulaimaniyah Islamic Society. They invite you to the annual Milad-e-Rasool-e Arabi Sallallahu Alaihi Wasallam program, Gyarvi Sharif Jalsa, and Isal Sawab of all Marhumeens. And this will take place on the 5th of July at the Sulaimaniyah Masjid, that's in Caneside Drive, commencing at 10:30 AM. All are welcome, inshallah Aziz. We have one more announcement, which I will make in due course.
1: This is Ali Mahmood on Qawwali Hour on Lotus FM.
0: जी हाँ, आप ईबी महमूद के साथ हैं, एंड यस, यू आर लिसनिंग टू कवाली अवर। आई वांट टू से शुक्र जज़ाकल्ला टू ऑल, सो मेनी ऑफ यू अगेन, वंस अगेन, इंद्रानी, वसंती, कानिगी, वन ऑफ दे आवर रेगुलर लिसनर्स, एंड लाइक आई सेड, यू नो, वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम द अदर डिनोमिनेशन दैट लिसन थ्रू एंड एंजॉय द म्यूजिक। थैंक यू गाइज सो मच। एंड ऑल्सो आरिफ Qasim, Arif Qasim Saab, one of our very, very ardent listeners, but he's been off the boil for a while. MashaAllah, shukriya Arif for tuning in. And like I've always said, that you know, not only us, sirf hum musalman jo hai, Imam Ali Maqam ke chahne wale nahi hai, isme itne ghair qom log bhi hai. And one of them very beautifully says, Pandit Gopinath, wo likhte hai, ke hai, aaj bhi zamane mein charcha Hussain ka. Hai, aaj bhi zamane mein charcha Hussain ka. चलता है मुल्क मुल्क में सिक्का हुसैन का, हे आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, और चलता है मुल्क मुल्क में सिक्का हुसैन का, और भारत में अगर आते तो भगवान कहते हम, भारत में अगर आते वो तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में लेता हुसैन का, और रावण की तरह मिट गया दुनिया से यजीद, रावण की तरह मिट गया दुनिया से यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का, और मुस्लिम तो पढ़ते आए हैं कलमा रसूल का, मुस्लिम तो पढ़ते आए हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का।